किवे गीते प्रियंकर परेरा के हनिन तमा एक गीत गायने उन्हें प्रियंकर परेरा पे हिटिए हुंद गायके एवगे मिलन गीते देव दुओ फला गियाद कियाने मगे आदरे मगे दुओ वगे आदरे कन किना माव अतहर गियाद आदरे कन किना अतहर गिया वगे दुख हिते तीन बिय ओब माव अमत करलद केनेकुट तिबुन आदरे आयमी वीमे वेदनाव सेमिंग मृदुलेस आन प्रश्न देवदुव ओया माव अतहर गया देवदुव अद मट हितेन ओया मट दूर गया वगे देवदुव मगे हिते आदरे आयमि वेलाद अभी सवान दुम प्रियंकर परेरा गायन देवदुव फला गया दो गीते